मुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जे

कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बतो तपाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे ते

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द

0: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: एक कहानी निधिदत्ता की जुबानी खोल रहा है फिर से कहानियों का पिटारा। कहानी कभी किसी मशहूर लेखक की, कभी किसी अनजानी सी दुनिया से निकली हुई, कभी दिल को छू लेने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली, कभी हल्की फुल्की और कभी गहरी, मगर हर बार एक नई कहानी, एक नया किरदार और इंसान को देखने का एक नया नजरिया। तो सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए हर सैटरडे शाम को 4 बजे। कहानियों की बस्ती फिर से बसने जा रही है, तो आइएगा जरूर।